ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦਿਟਿਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨੀ ਨਿਪਾ ਨਿਰਤਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਨਥਾਵੇ ਕੋ ਨਮ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਕਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਟਾਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਵਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਕਵਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਿਰ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰ ਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਅਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੇਹ ਘਟ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆਣਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਠਪਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵਨ ਮੂਤੇ ਕਵਨ ਦਿਸ਼ਟਾਨੇ ਜੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਕਰ ਫਕਰ ਮੈਂ ਜਨੇਵ ਪਾਰਿਆ ਬਾਰ ਬਿਸਤਾ ਤੁਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੋ ਸੂਦ ਬਿਰਤ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆ ਬੈਠ ਕੁਦੈਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਰੀ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਹਸੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਕ ਮੁਲਾ ਜੇਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੁਗਹਿ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਸਾਤ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰ ਨਿਤ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜਨ ਪਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਯਾਪੇ ਆਤੰਚੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤਿਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਕਪਾਰ ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਮਦ ਪਾਵੇ ਤਾਸੋ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨੀ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਂਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਕੇ ਮਾਨ ਤਸੇ ਵਸਾਰੇ ਮੁਕਦੇ ਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾਏ ਪੂਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਭਾਰਤਨ ਤਿਆ ਕੋਟੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾ ਛੋਡ ਝੂਠ ਸੰਬਚੈ ਜੋ ਸ਼ਰਣਾ ਸੁਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪੁਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਇ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪੋ ਤਾਰੇ ਤੋਏ ਗਰ ਤਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਖਰਾ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਦਿਹੋ ਪ੍ਰਵਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਨ ਚਾਰ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਸ਼ ਨਾਹੇ ਕਸ਼ ਕਰੇ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੇ ਲੋਹ ਸਵਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਰ ਤਨ ਸੁਆਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਥਾਹਾ ਜਾਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਜ ਸੁਨਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗੈ ਲੇਹੋ ਊੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾਂ ਬਜਾਤ ਪੂਜੇ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕਈਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਪੋਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਕੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋਫੀ ਸੁਰਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਆਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਾਈ ਸੁਆਬਿਨ ਚੀਤ ਜੋ ਪਰਾਇ ਤਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਵਸੈ ਅਨੰਦ ਕੇਰ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲਨੇ ਆਪੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਤਰੋ ਆਹੋ ਜੋਤ ਪਿਆਨੇ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪਿਆਰਦਾ ਜੀਉ ਪਨ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਅੰਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾਂਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਰ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮੇ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦਿਨ ਹਰ ਪਰ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਖੇ ਅਨਸਵਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੁ ਨ ਸੀਜਾਈ ਪਿਨ ਨਾਇ ਪਦ ਜਾਏ ਅਠ ਪਦੇ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਥੇ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋੜਕ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਪੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰ ਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਾਂਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕਹੁ ਕੀਜੈ ਸਾਧ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਮੀਠਾ ਸਰਵ ਸੂਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਾਇਆ ਸਭ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਅਗਣਤ ਸਾਹੁ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਂਦੇ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਕਸ਼ ਬਹੁਰ ਸਾਹੁ ਲੇ ਅਕਿਆਨੀ ਮਨ ਰੁਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੂਬ ਹੈ ਬੁਰਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੇ
ਜਿਸਕੀ ਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਕਨ ਕਰੇ ਨਿਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕਹੇਤ, ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ, ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਪੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਰਨ ਹਾਰ ਲਾਪਟ ਰਹਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਪਟਾਉ ਸੋ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇਹੇ ਤਉ, ਤਾ ਕੋ ਹਾਥ ਨਿਆਵੇ ਕਹੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੁਬਨ ਤਨ ਮਾਰ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਰ, ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇ ਪੇਖ ਹਸਤਾ, ਮਿਥਿਆ ਧਰੂਵ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਸੁਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਅਸਤਰ ਪਦ ਸਾਧਕੀ ਸਰਣ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸਰਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੁਹਿਰੈ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੁਪਾਰ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਹ ਲੁਪਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨੀ ਪਰ ਵਿਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਦਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਰ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੇ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਧ ਕੀ ਆਜਾ, ਸਾਰ ਪਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋ ਸੂਚਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤਾਂ ਕੇ ਦੁਰਗੰਧ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਖ ਪਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਸਤਾਮ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਕਟ ਬਸਿਓ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਪਰ ਜਾਉ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਜਾਨਣ ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੀ ਆਪ ਨ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੈ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਣੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪੇ ਮਾਨੇ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਤਨ ਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ, ਉਪਾਵ ਸਿਆਣ ਸਗਤ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੇ ਆਤਮਕੇ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜਾਏ, ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਅਸਮਾਏ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕਰੀ ਸਲੋਕ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਅਹੰਗ ਬੇਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਠਪਦੇ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤੇ ਠਾਕਰ ਪੂਰਾ ਕੁਨਵਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੇ, ਤਿਸਕੋ ਸਿਮਰ ਪਾਰਮ ਗਤ ਪਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਅਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤਿਆਈਏ ਤਿਆਵਨ ਜੋਖ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਤ ਵਲਵਾਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੁਈਜੈ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਾ ਬੀਜੈ, ਜੇਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਾ ਸਰਸਮ ਬਖਾਨੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੂ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇ ਰੂਪਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਬ ਦਰ ਕੇ ਮਾਨ ਪਾਵ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਪਰ ਸਿੱਤੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਭੂ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉੱਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰ ਕੋ ਆਸ ਕੀ ਜੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਭ ਹਸਤ ਸਪਾਰੀ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਕ ਮਿਰਖ ਧਨਾ, ਰਾਖ ਪ੍ਰੋਇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ, ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਪਣ ਪਣਾਈ, ਊਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਿਤ ਆਈ, ਤਿਸੈ ਤਿਆ ਜੋ ਇਕ ਅਲਖ ਹੈ, ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁਨ ਬੋਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਕਰ ਸਕਾ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਪਿਹਾਰੀ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਤਾਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਰੂਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਨਿਰਾਲ,
जे प्रसाद तेरी पातरा है गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पेके बिस्मार जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सो सहजे बसना जे प्रसाद हाथ कर चला जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गुर पाए जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जे प्रसाद प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल मनो बसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस जान मन सदा हजूर है जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तन सो राच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जाप सोए आप जपाए जपे सो नाम आप गावाए सो हर कुन गा प्रभु कृपा ते होए प्रकाश प्रभु दया ते कमन विगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मात उत्तम होए सर्वन धन प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हु लिया जित जित लाभ तित लगे हर नाथ नानक इन कै कछु नहा सलोक आगम अगार पा ब्रह्म सोए जो जो कहै सुमुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साजना के अचल कथा अटपदे साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगरी खोत साध के संग मिटे पमान साध के संग परगटे सुग्यान साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होतन बेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक उपर जतन साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी नान साध की शोभा प्रभ मय समानी सार के संग गोचर मिलाय सार के संग सदा प्रफुलाय सार के संग आवहे बस पंचा सार संग अमृत रापुंचा सार संग हो सब की रेन सार के संग मनोर पैन सार के संग न कतू तावे सार संग अस्तित मन पाए सार के संग मै ते भिन्न सार संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सार संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत सार संग किस सोनी पैर सार के संग न बिंगा पैर सार के संग नाई को मंदा सार संग जाने परमानंदा साध के संग नाई हो ताप सार के संग तजे सब आप आपे जाने सा बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आए सार के संग न कबू तावे सार के संग सदा सो पावे साध संग बस्तर अगोचर लह साधु के संग अजर सह सार के सम बसे थन उचै साधु के सम महल पहुचै सार के संग दृढ़ सब धर्म सार के संग कृपा ब्रह्म सार के संग पाए नाम तान नानक साधु के कुर्बान सार के संग सब को उधारे सार संग साजन मीत खुटम निस्तार है साधु के संग सो तन पावै जिस तन ते सब को बरसावै सार संग धर्म राय कर सेवा सार के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन सार संग अमृत गुण कायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जनम सार के संग नई खिरकार दर्शन पेट होत निहार सार के संग कलू खत हर है सार के संग नरक पर हर है सार के संग इहा उहा सहेला सार संग बिशरत हर मेला जो इच्छा है सोई फल पावे सार के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध निबसै नानक उदरे साध सुन रसै सार के संग सुनो हर नाम सार संग हर के गुण गाव साध के संग नमंते बिसरै सार संग सार पर निस्तरै साध कै संग लगे प्रमीठा साधु के संग कटका डीठा सार संग पे आज्ञाकारी सार संगत पे हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान सार पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जेता सुने तेता बखियानै सार के उपां ते गुंते दूर सार के उपां रही भरपूर सार की शोभा का नाही अंत सार की शोभा सदा बेअंत सार की शोभा उते उचे सार की शोभा मूते मूचे सार की शोभा साध बने आए नानक साध प्रभ भेद न पाए सलोक
मन साचा मुख साचा सोए अब न पेखा एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अठ पदे ब्रह्म ज्ञानी सदा नलेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख जैसे सुर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी का तीज एक जो बसता को खुद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है कनाव नान जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लाके जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तर उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्तर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही पपान ब्रह्म ज्ञानी उते ऊंचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रयाप करे ब्रह्म ज्ञानी सर किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी के साय ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसे ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन क्या नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नई विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार माह ब्रह्म ज्ञानी का नाई तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी का होय सफला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संसार उदार नान ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी के नाम तार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अंग भूत त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सो सहजन वास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनाल ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी के होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रयाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बर बर जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माय ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देस ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंतन पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सेठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सा जी पे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मोकत जोगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सायु प्रहात ब्रह्म ज्ञानी का सगरेकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी फनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक उर धारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निवक निम ठाकर नमस्कारे नानक ओह परस सगन स्तारे अठ पदे मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पार त्रै रूप न पेखे नेत्र सार की टैर संसंग हेत करना सुने काव की निंदा सबते जाने आस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरै इंद्रिय जैत पंच दुख ते रहत नानक कोट मदे कुवैसा परस बैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न विष्ण की मह ते होए भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बचै केवल भगत कीर्तन संगराचै मन तने अंतर सिण गुपार सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावे नानक ओ बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सग त्यागे दुर का संग मन ते बिरसे सगरा परम कर पूजे सगर पा ब्रह्म सार संग पापा मर खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहर करित नीत मन तन अर्पे बिशन परीत हरके चरण हृदय बसावे नानक कैसा भगवती भगवंत को पावै
सो पंडित जो मन प्रबुद्ध राम नाम आत्म सोधे राम नाम सरस पीवै उस पंडित कै उपदेश जीवै हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो ने आपे वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख में जाने अस्तूल चौबरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौबरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सा संग पावे जन को एकार कृपा अंतर उतारे पास परेद मुद पात्र को तारे सब रोका खुद नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहू जुगत कित न पाई धर्म नांग तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पा ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरिया दास दसंतन भाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर के परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगर संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम्हें तावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हर तैसा सोग सदा आनंद तनई वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी विखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक पुर कही है जीवन मुक्त पाप नम के सगले ठाव जित जित कर राखे तैसा तिन नाव आपे कर्ण करावन जोग प्रभावे सोई पन होग पसरु आप हो अंतरंग रखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता बिनाल सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहार श्लोक पोत्र करे अनेक जन अंत न पारा पार नानक रचना प्रवृति बहुपदयन प्रकार पदे कई कोट होए पुजारी कई कोट चार प्यारी कई कोट प्रति तवासी कई कोट बन प्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट पीसर होते कई कोट आत्म ध्यानता रहे कई कोट कवका विचारे कई कोट नवतन नाम त्यापे नानक करते कांत न पावे कई कोट पैपमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगात्म निकोर कई कोट पर दर्प को हिरा है कई कोट पर दुख न करहे कई कोट माय श्रमाय कई कोट प्रदेव परमाय जैत जैत लाभ तैत तिलकना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सहज सहद जति जोगी कई कोट सहद जति जोगी कई कोट राजर भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निपजाय कई कोट पण पणि बसंतर कई कोट देसु मंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देवदान विंद्र सशतर सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस भावे तिस तिस नस्तार कई कोट राज सताम सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत रसात कई कोट कीर्तन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीपै कई कोट गिरि मेर स्वर्ण थीपै कई कोट जख किन पचास कई कोट भूत परे सुकर मिर्गाच सब ते नेरे सब हूँ ते दूर नानका पलतया भरपूर कई कोट पतार के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीपे मरै कई कोट बोधुनी फिरह कई कोट बैठती काय कई कोट काले तपाय कई कोट किए तनवंत कई कोट मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ के हाथे कई कोट पै पै राखी राम नाम संत निवलाखी कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्या तिनको मिलो प्रभ ना कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन राखा रंग जिनको होए आप सो प्रसाद नानक ते जन सदा धन तन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट काश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जोगी नो विस्तार
कई बार फसरो पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट की ने भांत प्रवते हुए प्रम समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नान प्रभ सोए कई कोट पावरम के दात न होते आत्म प्रगार कई कोट तात के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम पीबै अमर पय सा सदी जीव है कई कोट नाम गुण काव्य आत्म रस सो सह समावे अपने जन को साथ साथ समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाई कोय नानक तिस पर हारणे जल थल मय रसोई अठ पदे करण कलावन करने जो का ज्योत भावे सोई हो का खिनमे थाप थापन हारा अंत नहीं कर पारा बारा हुक्मे तार अतर हावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे हुक्मे उच नीच पिहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नान सब में रिया समाय प्रभ भावे मानख गत पावे प्रभ भावै तां पाथर त्रावे प्रभ भावे बिरसा ते राखे प्रभ भावै तां हर गुण पाखै प्रभ भावे तां पद ते उदारे आप करे आपन विचारै दुहां श्रियां काय आप स्वामी खेले बुसे अंतर जामी जो भावे सो कर करापे नानक दृष्टि अवन आवै कहो मानक ते क्या होया पै जोत पावे सोई करा पै इसके हाथ होए तां सब से दे जो तिस पावे सोई करे अन जानत भिखै मैं रचै जे जानते अपने आप बचै भरमे फूला दहद तावे निमुख माहे चार कुंड फिरिया वै कर कृपा जिसे अपनी भगत नानक ते जन ना मिलै किन मैं नीर कीट को राज पार ब्रह्म गरीबनवा जाका दृष्ट कशु ने आपे तिस तत्का दैद फुटावै जाको अपनी करे बख्शीस तां का लेखा न कने जगदीश जियो पिंड सत की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनते अपनाए नानक जी फै देख पड़ा इसका बल नाई सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावे सोई फनती कभू ऊच नीच में बसै कभू शोक हरख रंग हसै कभू निंद चिंद बिहार कभू उब अकाल प्याल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावनहार कभू नित करे भांत कभू सोए रह दिन रात कभू महा क्रोध बिकरार कभू सर्व की हो तरवा कभू होए पहे बड़ राजा कभू भिखारी नीका साजा कभू अपकीर्त में आपै कभू भला भला कहावै ज्यों प्रवराखे तवीरा है गुर प्रसाद नानक सच कहै कभू होए पंडित करे बख्यान कभू मोहन धारी लावे ध्यान कभू तट तीर्थ स्नान कभू सिर साधक मुग्यान कभू कीट हस्त पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो सुहाकी दिखावे जो प्रभावे ते विन चावै जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा न कोय कभू साध संगत पावे उस स्थान ते बोने आवै अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं पिनात मन तन नाम ते करंग सदा बसहे पा ब्रह्म के संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गुण पाए विश्राम नान प्रभु के सकृपान सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तरे बड़े बड़े अंकारिया नानक कर्म करे अठ पदे जिसके अंतर राजपमान सो नर पाती हो स्वान जो जान मैं जुवन बंत सो होत बेष्टा का जंत आप सुखो कर्म बंत कहावे जन मरे वो जोन परमावै धन भूमिका जो करे कुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकिया मुक्त आगे सो पावै धनवंता हुए कर कृपावे तृण समान कर संग न जावै बोलस करमान कुपर करे आस पर पीतर तांका हुए पिनाज
सबते आप जाने बलवंत, खिन में हुए जाए पसमंत। किसे न बदे आप अंकारी, धर्म रायत करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जान नानक दरगे प्रवान। कोट कर्म करे हों तारे, श्रम पावे सगले बिर तारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म निद्रपै, हर दरगे कोह कैसे गवै। आप सगो जो फला कहावे, तसे भलाई निकट न आवै। सर्व किरण जा का मन होए, कोह नानक ता के निमर सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाई कोए। जब जाने मैं कछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीता, तब लग निश्चर नाई चीता। जब लग मोह मगन समाए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानको छूटै। सहस खटेला कूट तावै, तृप्त ने अभि माया पाछे पावै। अनक भो बिख्या के करै, नै तृप्तावे खव खव मरै। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर सुख होए, बडभागी किसै प्राप्त होए। करण करावन आपे आप, सदा सता नानक जा। करण करावन करने हार, इसके हाथ काम विचार। जैसे दृढ़ करे तैसा होए, आपे आपे आप रसोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूँ कै संग। बूझे देखे करे बबेक, आपे कापे अनेक। मरे ना बिनसे आपे न जाए, नानक सदी रिया समाए। आप उपदेसे समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप किनु आपन विस्तार, सब कछ उसका करने हार। उसते पैन कहो किछ होए, थान तनांतरे कै सोए। अपने चलते आप करने हार, कुत करे रंग पार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रसामी, गुर प्रसाद कने बखियानी। सच सच सत सब कीना, कोट मदे कन बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी पाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत सलोक। संत सन जो जन परै, सो जन उदरणहार। संत की निंदा नानका, बौर पौर अवतार अठ पदे। संत कै दुखन आरजा घटै, संत कै दुखन जम तेनी छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपा कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भीतरै। संत कै दुखन तिम पवै, संतन कै दुखन कागज लपै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन करमाए। संतन कै दुखन तिसना मै जलै, संत कै दुखन सब को छलै। संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीचन चाए। संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत भावे तापी गत पाए। संत का निंदक महत ताए, संत का निंदक खैं टिक न पाए। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखी अर दीन।

जिसको हर प्रभ मन चित आवै सो संत सहेला नहीं डुलावै जिस पर अपना कृपा करै सो सेवक को किस ते डरै जैसा सा तैसा दटा अपने कार्य में आसमाया सोदत सोदत सोद सीजिया गुर प्रसाद तब बूझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सूखम सोय स्थूल न किसी जन्मे न कुछ मरे अपन चलते आप ही करे अपन जम दृष्ट दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आस करमे आपन जुगत रच थाप उताप अविनाशी नाई किज खंड धारण तारिहु ब्रह्मंड अलख पे पुर प्रताप आज पाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सर संसार दृतन मंत प्रभ के सेव सर उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपार गुर का शब्द जप पै निहार उन किसे पास होई लागै जिसनु कृपा करे बड भागै नाम जद पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किस करै सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुभाए होवे सो होए करणे हर पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ रुकाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजै तिस माय समाए ओए सुख नदान उन्हु बनियाए आप सुखो आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सुन उदरिया नानक तिस पर हार आठ पदे टूटी गांडन हार गुपार सब जिया आपे बिरपार सर की चिंता जिसवन माए तिसते बिरथा कोई नाए हरे मन बिर सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जिसो प्राणी लोचै कोए तस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जापे खरना रूपवंत होए नाही मूहै प्रभ की जोत सगल घट सोहै धनवंता होए क्या को गर्भै जां सब किस तिसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बहे दतार तिस तीन हर जाने गबार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यो गुर का शाद मने अस्तमन ज्यो पखान नाव चढ़त रह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यो माहो ध्यान में मार्ग पावै तो साधु संग मिर जो पटावै तिन संतन की बाछो धूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिरलाइयै पर्व लिखे का लिख्या पाइयै दू सुपरा देवनहार अवर त्याग तू तसहचता जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरिया जान कौन बसते आई तेरे संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माए नानक पासे ती कर जाए

नानक सो जन सच समाता सलोक रूप नारेख रंग केश त्रिकुण ते प्रभिन्न तिसे बजाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अट पदे अबनासी प्रमन में राख मन की तू प्रीत्याग तिसते परे नाई कर कोई सर्ब निरंतर को सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरे के चरणी पाव नानक मन हुनरा मनसा पूर्ण सरना जोगा जो कर पाया सोई होगा हरण पण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगर सा जाके सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगे त्याय त्याय भक्त सुपाया नानक तिस पुरख का किन अंतन पाया।

सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जंदा सुनाम ते आवे से त्यो गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए।

नाना चरत करे खनमाय पूर रहो पूर्ण सवटाय नान बिद कर बणत बनाई अपने कीमत आपे पाए सब काट तिसके सब तिसके टाव जप जप जीवे नानक नाम नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड प्रमंड नाम के तारे सिमत बेप्राण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान।

की मत दे। बीस विषय गुर का मन माने सो सेवका, परमेश्वर की गाचा ने सो सत गुर जिस हृदय हर नाम। अनक बार गुर को बरजा, सर्वन दान जी का दाता। आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म। एक आपने गिर भरम, सह सियान पदया न जाय नान। कैसा गुर बटभागी पाई है, सफर दासन फेद पुनीत। परसा चरण गत ने मरीत, भेट संग्राम कुन रवे। पाप ब्रह्म की दर के कवै, सुनकार बचन कर्ण अखाने। मन संतोख आत्म पति आन, पूरा गुर अख उजा का मंत्र। अमृत दृष्ट पेख्यो संत, गुण प्यंत कीमत नी पाए। ना जिस भावे तसलय मिलाए, जेबा एक कुस्त अनेका। सत पुरख पूर्ण बबेका, काहू बोल न पहुंचे प्राणी। आकमे गोचर पा निर्वाणी, निराहार निर्भय सुखदाई। ताकि कीमत किन न पाई, अनक भक्त बंधन नित करै। चरण कमल हृदय सिमरै, साध बलहारी सतगुर अपने। ना जिस प्रसाद सब प्र जपनै, एहो हर्ष पावे जन कोई। अमृत पीवे अमृत सोहो, इस पुरखा नाई करे बिना। जाके मन पटे गुणतार,

दया पूरा जा का नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊ अष्ट पादी पूरे घर का सो पूरे गुर का सो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे सा सा सिमरो गोबिंद मन अंदर की उतरे चंदा आसन त्या गोत्रंग उसना की तूर मन मांगा आप छोड़ बेनती करो सास अगन सागर तारो हरदन के पर ले भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम गो सहज नंद सास परमानंद नरक नवार उदारो जियो गुण गोबिंद मरा पियो चे चितो नारायण एक रूप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दो पन्न पूरन कृपाल सिम सिम नम बारंबार नानक जी का ए आधार ओ तो मसलो साध के बहन अमलीक लार रतन सुंद कुमार तो आधार आप तरे लोके निस्तार सबल जी सुलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द नाद वाज सुन सुन करे प्रभु गा जय पढ़ बार मान के माते नानक उदरे तिन के साते सरन जो सुब सरनी आए करके पर मलाए मिट गए बैर पै सब रे ने अमर नाम सा सन लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेवा आर जंजाल बिगार तेरा ते राम सुर न कहते हे कर प्रसाद आप अवतारी नान निभिखे बमारी प्राव गुत करो सनमीत सावधान एकाग्र जी सुमनी सहज गोविंद गुरनाम जिस मन बसो निदान सर विशा ताकि पूर्ण होए प्रदान पूर्व प्रसल होए साव तुझ पाए स्थान बौर न होवे हमन जान हर धन गाड़ जल जन सोए नान जे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्धा विद्या ताप जो प्रत्यान ज्ञान सेठ उत्तम श्रान चार पदार कंबल गा सब के मसल ते उदार सुंदर चतर तात का बेता समदस्ती है दृष्टेता ये फालते जन के मुह पन है गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए नदान जपे मन कोय सब जुग में ताकी गतोय गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बसराम कोड़ अपराध साध संग मिटै

सुखमणी राम कली महला तीजा। आनंद क्या ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तम पाया सह सेती मनोजियां वधाइया राग रतन परिवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो तंगा बोरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सबना गलां सम्राट स्वामी सो क्यों मनु वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किच है जे दे सो पावे सदा से सुला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसे आओ वाजे शब्द कनेरे कहे नान सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सो मन आय वसे आ जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किया गुरु भेटो जे दियां वड़ियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारी आ पैंदो तुर वस कीते काल कंटक मारे आ तुर करम बाया तो जिन को से नाम हर के लागे कहे नान तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड पागी सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे

हाँ जी बच्चे प्लीज आ जाओ बेटे आ जाओ। हैप्पी बर्थडे रॉयन, हैप्पी बर्थडे बोले सो निहाल सात श्री अकाल। तो बच्ची अनाया सो आ जाओ। श्रवण करो कीर्तन प्लीज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कबीर जिह दरियावत जाते हो हटके नाही कोए सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए कबीर डूबा था पह उबरियो गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर जरा तब उतर परयो हो फर्क कबीर पापी भगत ना भावे हर पूजा ना सहाए माखी चंदन पर हरे जहां बेगंध तहां जाए कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रो बनहार।

0: कबीर बिरहो पयंगम मन बसे।
1: कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध, ते मिलते अमृतम पए लोकाट नरगंध। कबीर जम काठेगा बुरा है उन्हीं से आ जाए। एक जो साधु मोहे मिलो तिन लिया अंचल लाए। कबीर वैद कहे हाँ ही पड़ा, दारू मेरे बस ये तो बस तो गोपाल की जब पावे ले खस। कबीर नौबत अपनी दिन दस लेह बजाए। नदी नाव संजोग ज्यों बौर न मिल है आए। कबीर सात समुंदर मस करो कलम करो बनराए। बसुदा कागद जौ करो हर जस लिखण न जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल। कबीर रमैया कंठ मिल चुकै सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए। पांचों लड़के मार कर है राम ल्यो लाए।

तू कबीर मन मुंडिया नहीं किश मुंडाए कां जो किश किया सो मन किया मुंडा मुंडिया जाए। कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए तन जाओ चरण कमल चित बेदया रमै नाम समाओ।

जंत बिचारा क्या करे चले बजावन हार। कबीर माय मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए। आप डुबे चौं बिद मैं चले दिए बहाय। कबीर जेते पाप किए रखे तले दराए। प्रगट पय निदान सब जब पूछे धर्म राय।

है कबीर सोई मुख तन है, जा मुख कही है राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली, जा कुल हर को दास, जिह कुल दास न उपजै, सो कुल टाक पलासु। कबीर है गए बहन सगन कन, लाख तजा पहराहें, या सुख ते भिख्या पली, जो हर सिमरत दिन जाहें। कबीर सब जग हों फिरयो, मंदल कंध चढ़ाए, कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए।

बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजे कोई, पाछे पाँव न दीजिए अगे होए सोए। कबीर जग बांधो जेह जेवरी, ते मत बंधो कबीर, जहें आटा लून ज्यों सौन समान शरीर।

अज हूँ जीव न छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझको श्रवण सुनो तो नाओ बैन चरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज को चरण कमल की मौज में रहूं अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्माना कह बेको शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहा कहे न को पतियाए हर जैसा तैसा ओही रहो हरख गुण गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे जैसे बच रहे कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन्नर छाया बरख परे सरताल चात्रक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवालू।

जू नर बिशरी राम स्यों, ना दिन मिले न रात। कबीर रह नायर बिशुरिया, रौरे शंख मजूर। देवल देवल ताहड़ी दिसै उगवत सूर। कबीर सूता क्या करें जाग रोए पै दुख। ज्यों का बासा गुर मैं सो क्यों सोवै सुख। कबीर सूता क्या करें उठ के न जपै मुरार। एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड़ पसार। कबीर सूता क्या करें

कबीर संत की गैल ना छोड़िए, मार्ग लगा जाओ देखत ही पुनीत होए, भेटत जपिए नाओ। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर जाइए भाग, बासन कारू परसिए तो कश लगे ताग। कबीरा राम न चित्यो, जरा पहुंचियो आए, लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो, जो कीनो करतार, तिस बिन दूसरे

पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है ज्यों तरनी में खे। कबीर खे हुई तो क्या पया, ज्यों उड़ लागे अंग। हर जन ऐसा चाहिए

हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। उच्च पवन कनका मनी शिखर तजा फहराए, ताते भली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर भला, राम भगत जिहें ठाए। राम स्नेही बाहरा, जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे, सहज सुन के काट, तहां कबीर है मट किया, खोजत मन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते,

जो जन निर्धावे रह सो गने इंद्र सोरंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी न सके कोई नीर।

कागद दे बिहाए बावन अखर सोध के हर चरणी चित लाए। कबीर संत न छाड़े संतई ज्यों कोटक मिले असंत मलयागर भयंगम बिड्यो तासी।

जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान। कबीर सारी सिरजन हार की जाने नहीं कोई, कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर भली पई जो पौ परिया, कबीर भली पई जो पौ परिया, दिशा गई सब भूल, ओरा गर पानी पया, जाए मिलियो ढल कूल। कबीरा तुर सकेल कै पुरियां बांधी दे, दिवस चार।

कह उदय पई सब देहे, गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जहां अन पौ तहां पै नहीं, जहां पौ तहां हर नाहे।

आए अनक सियाने पच गए ना निरवारी जाए। कबीर हज कब हो जाए था अगे मिलया खुदाए। साई मुझ स्यों लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज का बह होए होए गया

कबीर तू तो करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं। जब आपा परका मिट गया, जत देखो तत तू। कबीर बिकार चितवते, झूठे करते आस। मनोरथ कोई ना पूरेओ, चाले उठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। इत उत कत है न डोलई।

कबीर काणी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए परा पूर्वली पावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कुकर पौकड़ा करंग पिछे उठता है करमी सतगुरु पाया चिन्हों लिया छड़ाए। महला पंजवा कबीर।

तस्कर बैसें गाहे धरती पार न ब्यापई हुन को लहू लाहे। महला पंजवां कबीर चावल कारणे तुख को मोली लाए।

कहत लोचन मीत काहे शिपोषैल राम न लवो चीत। नमा कहत लोचना मुख ते राम समाल हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवां कबीरा हमरा को नहीं हम किस हों के नाहें जिन एह रचन रचाया तिस ही माहे समाहें। कबीर कीचड़ आटा गिर परिया किशु नायो हाथ पीसत पीसत चाबिया सोई निबिया साथ।

काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पर, कबीर लागी प्रीत सुजान, स्यों बरजै लोग अजाना।

काहे मरो सवारु, कारज साढ़े तीन हाथ, कणी ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवा ना करै, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करै, जो मेरे चित ना होए। महला तीजा। चिंता पी आप कराए सी, अचिंत पी आप दे, नानक सो साला ही है, जे सबना सार करे। महला पंजवा। कबीर राम न चित्यो, फिरया लालच माही, पाप करम ता मर गया, औद पुनी खिन माही। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखें ता राम भाजो,

रात दिवस के कूखने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मय मंत। अंकश ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत।

गुमेंगे मोड़, कबीर राम नाम जानयो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल न छोड़ई, जम दी आत्मा माए। कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विपाद। कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिशावरी, बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए, ठाक नयव कट काट। कबीर एक घड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। कबीर भांग मछली सुरापान, जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए, ते सबर सातल जाहे। नीचे लोयन कर रहो, ले साजन कट माहे, सब रस खिलो पीसो, किसी लखामो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोयन क्यों करो, सब कट देखो पियो। सुन सकी पी मैं जियो बसै, जी मैं बसै के पियो,

भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज कै पच मुआ, चारों बिरदों माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए। कह कबीर गुर पढ़ी बजाई, कींटी होए कै खाए। कबीर जाँ तोहे साध परम की, शीश काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए तहोए। कबीर ज्यों तोय साध परम की, पके सेती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल।

ये बिन भगतों भगवंत हर सो हीरा शाड के करहें आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जौ गृह करहें ता धर्म कर नाहीं तकर बैराग।

श्लोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद जित दहड़ धन वरी साहे लय लखाए मलक जिकनी सुनी दा मोदे खाले आए जिंद नमाणी कड़िया हड्डा कूकड़काए।

बन उठाई पुटली किथे वन्या कत किज न बुझै किज न सुझै दुनिया गुजी पा।

काले लिखना लेख आपनड़े गिरीबान में सिर नीवा कर देख फरीता जो तै मार न मुकिया तना न मारे कुम्मा आपनड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम्मा।

किचर ताई नीर फरीदा महल निसखन रह गए वासा आया तल गोरा से निमाणिया।

अमृत प्रवाह सारे अतुल भंडार, पर परै हिते परै अपरे अपार पार। अपनो पावन कर मंत्रा दूसरो धार, उपत पढ़ लो एक निमख तूं कार। आन नाही समसर जियारो निर्मर, कोट पराचित जाहे नाम लिए हर हर। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जीह क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार।

पार ब्रह्म की कत नहीं जानी। जो बन रूप माया मुदमाता विचरत बिकल पड़ो अभिमानी।

परम्परी। हरे मन भूस बिला मैं गर्भत कर्तब करत महामुगना संपत दोल चोल संग झूलत माया मगन प्रमद कुगना। सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यों मोह बड़ियो सो कना। बोयो बीज अहमम अंकर बीतत औद करत्या कन्ना। मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंच

जानत सुपना देहना गहना निहना नीता माया मत कहा लोगारो छत्र ना पत्र ना चोर ना चावर मैती जात हृदय ना विचारो।

आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन मंदेव ना जात बिदे मन दर्श मग पावक जरियो ना जात रहो जन धूर लग नीर नसा कस बोर चलै हर पंथ पग नानक रोग दोख यग मोचद हर नाम खग उद्दम कर लागे बो भक्ती विचरै अनेक शास्त्र बो खटुआ पसम लगाए तीर्थ बो भ्रमते सूखम देह बंदे बो जटुआ बिना हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बटाए सूत के हटुआ।

गावै गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक समरंथ गुणा। गावै गुण शेष सहस जह बारस आद अंत लिव लागतना। गावै गुण महादेव बैरागी

लहना कर। सदा अकल रह करण सुनिच्छा चारा, द्रुह मसपूर ज्यो निवै खवै कस बिमल बिचारा।

जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखा शरण परे ते बरे छोड़ जमपुर के लिखा भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतारै।

भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तुहे बनयावै। सवैये महले चौथे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद। एक मन पुरख निरंजन त्याव गुर प्रसाद, हर गुण सदगाव गुण गावत मन होए बिगासा। सतगुर पूर्जना की आसा, सतगुर सेव परम पद पायो। बिनासी बिगत ते आयो तिस भेटे, दर्द न चंपै कल सहार। तास गुण जंपै जंप गुण बिमल सुजन जन केरे। अमय नाम जाको फुरिया, इन सतगुर सेव शब्द रस पाया। नाम निरंजन उर तरिया, हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक। चाहक तत समत सरे, कव कल ठाकुर हर दास तने। गुरु रामदास सर अपर परे, छुटत प्रवाह में अमरा पद। अमृत सरोवर सद परे आते, पीवे संत करे मन मज्जन। पुब जिनो सेवा करिया, तिन पहु निवारण पै पद दीना। शब्द मातर ते उदर तरे, कव कल ठाकुर हरदास तने। गुर रामदास सारे अपर परे, सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत। आत्म रंग च लूल पे आ, जागया मन कवल सहज प्रकाशया। भय निरंजन करै लहा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया। तिस प्रसाद वस पंच करे, कव कल ठाकुर हरदास तने। गुर रामदास सारे अपर परे, अनुभव अनुमान अकड़ले वैरागी। पारस भेटिया सहज करे, सतगुर प्रसाद परम पद पाया। भगत पाए पंडार परे, मेटिया जन्मांत मरण पो भागा। चित लागा संतोष सरे, कव कल ठाकुर हरदास तने। गुरु रामदास सारे अपर परे, अपार भरे पायो अपार। हृदय अंतर तारियो, दुख पंजन आत्म प्रबोध। मन तत विचारियो, सदा चाहे हर पाए। प्रेम रस आपे जाने, सतगुर कै प्रसाद। सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने। नानक प्रसाद अंगद सुमत, गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कल उचरै, तय अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै, अमरस रसन प्रकाशै। मिलत शांत उपजै, दुरत दुरंतर नासै। सुख सागर पायो दिन्त, हर मग्न हुटै। संजम सा संतोख, सील सुनाउ मुफटै।

जग जितो सतगुर प्रमाण मनिक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नव निध नाम निधान रिद सिद्धता की दासी सह सरोवर मिल्यो पुरख पेट बिना सही आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दृढ़ायो गुरु रामदास कलियो चिरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुगली ना हुटे सदगुर सबदे अथाहो अमय धारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सरसह समायो अजुनी संपवियो जगत अंगुर बचन तरायो बिगत अंगोचर अपर पर मन गुर शब्द विसायो गुरु रामदास कलियो चिरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नाम निधान भगता पवतारण अमृत बूंद हर नाम अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखै निवारण सह सरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाईए धन ते जन बड़ पागे ते मुक्ते भये सतगुर शब्द मन गुर प्रचा पायो

संतोख सराय च सदाशील सन्नाव सो है गुर सब समाचार्यो नाम टेक संगात बो है आजो नियो पल अमल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल चरै तो सहज सरोवर बास गुरु जन को सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जन को गुरु सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नास है गुरु जन को सो प्रसन्न मान बिमान निवार है जन को गुरु सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है पर चो परमान गुरु पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुगत सब गुरु लग सतगुर खेमा ताने जगजूत समाणे अनपोने जा नाम टेक जित भगत अकाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाण्यो राज जोग गुरु रामदास तुम हू रस जाने जनक सोय जन जानिया उन मन रथ धरिया सा संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा मरा पूरी जिस दे सो पावै यो जनक राजगुर रामदास तुझ ही बनया वै सतगुर नाम एक लिमन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो वै जियो तारण तरण खिन मात्र जाको दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खो वै जियो जीवन सबन दाता गम ज्ञान विख्यात नस्त्यान तावै पलक न सो वै जियो जाको देखत दरिद्र

तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जीओ। धर्म करम पूरा सतगुरु पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे। शब्द सारे कलिव लाई है, फुन जाने को तेरा अपार। निरपो निरंकार कथ कथन हार, तुझे बुझाई है परम पूले संसार। छोटो जुनी संघार जम को न दंड काल, गुरमत त्याई है मन प्राणी मुक्त विचार। नस जप परम करम पूरा सतगुरु पाई है, हों बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर। कवन उपमा दियो कवन सेवा सरेयो, एक मुख रसना रसो जुग जोर कर। फुन मन बच क्रम जान अनत न दूजा मान, फुन मन बच क्रम जान अत दूजा ना मान। नाम सुअपार सार दीनो गुर रिद धार, नल कव परस परस परस कच कंचना हुए। चंदना सुबास जास सिमरत अनतार,

जगत पयो आनंद तारण मनोखिर जनकी प्रकाश गुर अंगद दियो निदान कथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जंतना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पात गन देखत गत चरण कवल जास साबिद मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न राज योग तख्त दीयन गुर रामदास रड जिसै तारियो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तुरु फल फुल दियो सुर नर सपत समुद्र के तारियो त्रपवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुरमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुरश्रवण सुनियो बिखते अमृत हुयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धार पाहण माणक करै ज्ञान गुर कहो बिचारै काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए

सत्संगत सेती मन खचना, किया खेल बड मेल तमसा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने, से बिरंच तर ध्यान ने

दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मन ध्यान तरह फिरत सगल जोगे कबू का को पाव आतम पर गास को बेद बाणे सत बिरंच जस गावे जाको सिमरन गहन तजात कबलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तपे जटा जूट भेख किए फिरते उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोक प्रगासे देखत दर्स पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदात लुभित अल समूह जो कुसुम सुबासे विद्यमान गुरु आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदासे तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो स्मरत फुन कीरत वंत सदा सुख संपत हृदय अर सिद्ध न छोड़े साथ दान बड़ो वतवंत महाबल सेवक।

सरस कियो न जगत कोई, अपन आप आपियो पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत, सुर असुरा नर गण गंतर्ब खोजंत फिर विनाशी अचल ज्योनि संपो पर खोतम या पार परे।

जय जग मह तै हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज धारी यगम ज्ञान रस रस्यो ही।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुप भगत हर के जोगण अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कंबीर प्रणंग तिनको अवतार।

परम पद पायो। मनसा कर सिमरंद तुझै, नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणंग। बाचा कर सिमरंद तुझै, तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणंग। कर्म कर तो दरस परस पारस, सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह, तै हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत नयन के मिटे तिमरखिन, जे सतगुर सिमरंत निमर के नयन के तिमर मिटैखिन। जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तबत मिटावै। जे सतगुर सिमरंत हरिद सिद नाम निद पावै। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत, तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ। सो सतगुर सिमरो नरो, जिन शब्द कमाए परम पद पायो। सेवा करत न छोड़ियो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रगट जियारो। दुख दरिद्र अंधियार को नास, कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे। तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास, जवे अंगद अंग संग नानक गुर। तेव गुर अमरदास कै गुर रामदास, जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो। निसबासर हर चरण निवास, ताते संगत सगन पाए पो माने। तुम लिया गर प्रगट सुबास,

सतगुरु ज्ञान मन चाव न हुटै, सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नानक हुटै। गुरु रामदास तन सर्व मैं सहचंदुआ ताणियो, गुरु अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो। पै नृपो माण्यो लाख मै लख लखायो, अग मंग उचर गत कबीर सतगुर परचायो। गुर प्रचय परवान राज मैं जो कमायो, तन तन गुर तन अपर सर सुपर परायो। गुर गम प्रमाण जर जरयो सर संतोख समायो, गुर अर्जन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो। अमियो रसना बदन बरदात अलख अपार, गुर सूर शब्द होमै निवारो। पंचाहर निदलियो सुन सहज निज कर सहारो, हर नाम लाग जग उदरो सतगुर हृदय बसायो। गुर अर्जन कल उचरै तै जिनका कलस दीपायो। सोरठे गुर अर्जन पुरख प्रमाण, पार्थो चालै नहीं निजा नाम निशान। सतगुर शब्द सवारियो भवजल सायर सेत, नाम हरि का बोहेता तो सतगुर संहित। नाम लाग जग उदरियो जगत उदारण नाम, सतगुर तुठै पायो। अब नाही अवर सर काम, बार अंतर पूरी पड़ी जोत रूप हर आप। गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो, तात स्यों तत मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, गुरु अमरदास अमृत छत्र गुरु रामै दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बयन, मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नयन। सत रूप सत नाम सत संतोख तरियो, और याद पुरख परताख लिखियो अचार मस्तक तुर। प्रगट जोत जग मगै तेज मंडल छायो, पारस परस परस परस गुरु गुरु कहायो। पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए, चित सनमुख रहो कल युग जहाज। अर्जन गुरु सगल सृष्ट लग बितरो, तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत। बासुर रयन बास जाको हित नाम स्यों, परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगो। बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों, अपर परम पर पुरख स्यों प्रेम लागो। बिन भगवंत रस नाही औरै काम, स्यों मथुरा को प्रभ सरब में अर्जन। गुर भगत कै हेत पाए रहियो, मिल राम स्यों अंत न पावत। देव सबै मुन इंद्र महाशिव जुग करी, फुन बेद बिरंच विचार रहियो। हर जाप न छाडो एक करी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है। संगत सृष्ट ने हाल करी, रामदास गुरु जग तारण को। गुर जोत अर्जन माए तरी, जग और न या है महतम में। अवतार जागर यान कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए।

हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़ थे, कब हो मिट है नहीं रे पुछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। कल समुद्र पे रूप प्रगट, हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय। दुख दरदर निवारण निर्मल पेख अपार, तास बिना वरना कोई। मन बच जिन जानियो पयो।

सूत की वेद पढ़ा मुख चार नवा खंडा बिच जानिया अपने चज विचार ब्रह्मण कैली कात कंजिका आनचारी का तान फिटक फिटका कूड़ बदिया सदा सदा अभिमान पाहे इते जाहे विसर नानका एक नाम सब बुद्धि जली एक राह तत् ज्ञान माथा जो तुर लिखिया सो मेट न सका कोय नानक जो लिखिया सो वरतदा सो बूझै जिसनो नदर होए जिनी नाम विसारिया कूड़ा लालच लग तंदा माया मोहनी अंतर तिसना अग जिना बेलना तुंबड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई ना मिल ही वग सग आप भुलाए भुली आपे मेल मिलाए नानक।

काम क्रोध मन हिर लिया, मनमुख अंधा लोए, ज्ञान खड़ग पंच दूत संहारे, गुरमत जागा सोए।

मनमुख बोले अंदले तिसमा अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द ना करह परगास। उना अपनी अंदर सुध नहीं गुर बचन न करह विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है

क्यों हुआ करवास, मन मुखिया दोह अग्नि, आवण जान मुयास। गुरमुख नाम सुहाग है, मस्तक मणि लिखियास। हर हर नाम उरत हरिया, हर हृदय कमल परगास। सतगुर सेवन अपना, हो सद बलिहारी तास। नानक तिन मुख उजले, जिन अंतर नाम परगास। शब्द मरा सोई जन सिजा, बिन शब्द मुक्त न होई। पेख करै बौ करम विगुते, पाए दूजा परज विगोई। नानक

अंतर अज्ञान गुबार तब नर सुता जागिया सिर डंड लगा बहु पहार गुरमुखा करा उपर हार चेतिया से पायन मूख द्वार नानक आप उधरे सब कुटुंब तरे परवार शब्द मरै समुआ जप गुर प्रसादी हर रस त्रप हर दरगा गुर शब्द संजप बिन शब्द मुआ है सब कोई।

गड़ालुज गुरमुख हुए तेस सबके सुज, नानक गुरमुख मनस लुजा, जिना सतगुर पुरख ना सेवियो

सुख होवी मित। भुले आप समझाए से जा को नदर करे, नानक नदरी बाहरी करण पला करे। श्लोक महला चौथा। एक ओहकार सत गुर प्रसाद वड पागियां सोहागणे, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय। अंतर जोत प्रगाशिया नानक नाम समाए। वाह वाह सत गुर पुरख है, जिन सच जाता सोए। चित मिलिया ते खुतरै, तन मन शीतल होए। वाह वाह सतगुर सत पुरख है, जिसनो समत सब कोए। वाह वाह सतगुर निर्वैर है, जिस निंदा उस्तत तुल होए। वाह वाह सतगुर सुजान है, जिसे अंतर ब्रह्म विचार। वाह वाह सतगुर निरंकार है, जिसे अंत न पारावार। वाह वाह सतगुरु है, जे सच दृढ़ाए सोए। नानक सतगुर वाह वाह, जिसते नाम प्राप्त होए। हार प्रभ सच्चा सोहेला, गुरमुख नाम गोविंद। वंदन नाम सलाहना, हर जपया मन आनंद। वडभागी हर पाया, पूर्ण परमानंद। जन नानक नाम सलाहया, बौड़ न मंथन भंग। मोह प्रिया सोने, क्यों सज्जन मिले प्यारिया। हो टूटें दीतन सज्जन सच सवारिया। सत गुर मैंडा मित है, जे मिले ताए मन वारिया। देंदा मोह पिर दस, हर सज्जन सृजन हारिया। नानक हों पिर पाली अपना, सत गुर नाल दिखा लिया। हों खड़ी निहाली पंध, मत मोह सज्जन आवे।

अंत न सकी छाए, बिन नावे सब दुख है दुखदाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया बिछुड़ सब जाए। गुरमुख हुक्म मन्ने शकीरा हुक्मे ही सुख पाए। हुक्मो सेवे हुक्मे राधे हुक्मे समय समाए। हुक्म वर्त निम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए। सदा सुहागण जे हुक्मे बुझै सतगुर सेवै लिवलाए। नानक कृपा करे जिनी उपरत न हुक्मे लै मिलाए। मन मुख हुक्म न बुझे बपुड़ी नित हों मैं करम कमाए। वर्त निम सो संजम पूजा पाखंड भरम न जाए। अंतरों कुशुद्ध माया मोह बेदे ज्यों हस्ती शारि उड़ाए। जिन उपाए तसै न चेतै बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करतै पूर्व लिखिया कमाए। गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया आन दिन सेवा करत समाए। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखै सब आए। मनिया सतगुर परम विचारी चित मिलिया तिशना भुख सब जाए। हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभु सच्चा दे मिलाए। नानक करम पाया तन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए। जिन प्रिया सोने से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हों फिरा पी हिरदे रखा संभाल। जिन्ना एक मन एक चित आया सतगुर सौ चित लाए। तीन

अभयो जनाम जिन कीतो सो विसरे। सोरठ सोरस पीजिय कबहू ना फीका होए, नानक राम नाम गुन गाये दरगा निर्मल सोए। जो प्रभु रखे आप तिन कोए न मारे, अंदर नाम निधान सदा गुण सारे। ये काटे के गमन तन प्रभु तारे, लगा रंग अपार को ना उतारे। गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे, नानक नाम निधान हृदय उर हारे। करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे, अपनी नजर निहाले आपे ले हुलाए। जन दे उमती उपदेश विचों परम जाए, जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए। सब कष्ट तिसद वस दूजी नाह जाए, नानक सुखी आनंद पै प्रभु की मन रजाए। गुर पूरा जन सिमरिया से पै निहाल, नानक नाम आराधना कर जिया वै रास। पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन माधानिया त्यों मथे त्रम राय। नाम त्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवै कीतो पवन पुनीत। खुबड़ी कुथाए मिठी करण कुमंत्रिया, नानक से युबरे जिन्ना पाग मथा। सुतड़े सुखी सवन जो रते शाह अपने, प्रेम विशोहा तनी सौ अठे पैर लवन। सुतड़े असंख माया झूठी कारण, नानक से जागन जिर सना नाम उचारण। मृग तिश्ना पेख पुलने वठे नगर गंधर्व, जिन्ने साचे राध्या नानक मन तन फाब। पति उदाहरण पार ब्रह्म समरत पुरखिया पार, जिसे उधारे नानका सो सिमरे सृजनहार। दूजी छोट कवाटड़ी एक सौ चितलाए, दूजे पामी नानका वहन लुढ़ंदड़ी जाए। ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रिया, सच वकर जिन लदया से सचड़े पासार। पंथा प्रेम न जाने भूली फिरे गवार, नानक हर बिसराए कै पौंदे नरके अंधियार। माया मनो न विसरै मांगै दम्मा दम, सो प्रभु चित न आवै नानक नहीं करम। तिचर मूल ना थुड़ींदो जिचर आप कृपाल, शब्द अखोट बाबा नानका काए खर्च तन माल। कंब वे कांदड़े जे लहा किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोई है सबना दावे साहु को अंकार। सत गुर प्रसाद

पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जेते उपजियो नानका लीन ताहि मैं मान। कट कट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार, कौ नानक ते भज मना पौन दे उतरै पार। सुख दुख

ओस्तत निंदयाना है जे कंचन लोह समान, कौ नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान। हरख सोग जा कह नहे बैरी मीत समान, कौ नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान। पै काहू कौ देत न पै मानत आन, कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखया सगली तजी लियो पेख बैराग, कौ नानक सुन रे मना ते नर माते पाग। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कौ नानक सुन रे मना ते कट ब्राह्मण वास।

जो प्राणे ममता तजै लोभ मोह अहंकार कौ नानक आपन तरै औरन लेते उधार। ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग कौ जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन

जागरचना तैसे रची को नानक सुन मीत, प्राणी कशु न चेतई मद माया कै अंध, को नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले हो,

कौ नानक बिन हर भजन बिरथा जनम सिरान। जो प्राणे निस दिन भजै रूप राम ते जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोबिंद नाम। कौ नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध। कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख में बहु संगी पे दुख में संग न कोय। कौ नानक हर भज मना अंत सहाय होए।

जतन बहुत मैं कर रहयो, मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो, राख ले हो भगवान। बाल जवान यर बिरध फुन, तीन अवस्था जान। कौ नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। करण हो तो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध।

झूठ मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान, इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देखो बिन सैशन मैं मीत, जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जे प्राण कै नाह मान, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को ग्रे ज्यो सदा स्वाण तजत नहीं नित, नानक बिद हर भजो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अर दान कर मन में तर गुमान,

नानक सब किस तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को नन बेओ साथ। कह नानक है विपत में, टेक एक रघुनाथ।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग लापे अठो नंदन प्रथम राग पैरो वह करही पंच राग ने संग उचरही प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन्य सलेखी की पै बारी ये पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावे अपने अपने पांत वष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पालतर द्वितीया माल कौशक आला पै संग रागनी पांचों था पै गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनाश्री ये पांचों गाय मालरा कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक्यो बारा खौ खट्यो पौराणद गाय अष्टमाल कौशक संग लाय पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस्व हिरी ले पार जा संगलाई पांचों वार जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बे मंगलन सोहाय सरस बान्यो वाय बिनोदा गामे सरस बसंत कुमोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशरली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदियो गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतलो रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरायो कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावे पांचों संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पाछे सिंध भी अलापी श्री राग स्यों पांचों थापी सालू सारंग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कोंब हमीर खाष्टम एक राग वह गावे पांचों संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुने पुन गावे आसा गुनगुनी

वटभागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बास रहे हृदय गोर चरण प्यारे रहाओ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुकत गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ

0: सात गोर निस्तारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हाजरियां भरे गुरु सारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटन कोटान धनवाद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिसका ओट आसरा लैके हर साल की तरह इस साल भी नगर माड़ी मीरपुर माड़ी नवा पिंड मलियां खुरद ते मलियां कलां की संगत वालों जो महापुरश बाबा लक्ष्मण जी की याद में अखंड पाठ साहब परसों रोज तो शुरू करवाए गए सन गुरु कृपा हुई निर्विघ्नता साहब संपूर्ण हुए हैं तथा भोग पे उपरंत गुरु महाराज के चरणों में इलाके की सुख शांति वास्ते जो है अरदास बेनती हुई तो गुरु महाराज ने हुक्मनामे दे जो असीस बख्शिश की है आओ अरदास करिए कि जो परसों रोज तो बाणी जपी पढ़ी सुनी जा रही सी ते जो गुरु महाराज ने हुक्मनामे दी असीस बख्शिश की है सब दे जो भाव अर्थ हैं साडी समझ विच आ जाण ते असी अपने जीवन नू जो है गुरबाणी दे अनुसार चलाउण दा जतन कर सकीए। इन्हां नगरां दी संगत जो है हर साल ये महापुरशां दी याद दे विच अखंड पाठ करवाउंदे हन। हर एक इलाके दे विच कोई ना कोई इस तरह के महापुरश होए जिन्हां ने संगतां नू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़न दा यतन कीता ते उहनां दे सदका ही अज देशां विदेशां विच बैठियां संगतां जो हन उहनां जिथे महापुरशां नू याद करदियां हन उत्थे अपने गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जो हन उहनां अगे वी अरदासां बेनतियां करदियां हन। जो प्रबंधक वीर हन उह अपने रझेवियां भरे समय के विचों हर साल समा कढ के आप सब जानते हाँ कि इन्हां मुल्कां दे विच जो समा है उहदी काफ़ी कीमत है ते भावें कई वारी असीं वेले भी होईए पर इहो जिहे कम्मां लई समा कढ़ना बड़ा कठिन हो जाता मुश्किल हो जाता होर बहुत सारियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां वध जांदियां हन उह पर फिर भी ये समा कढ के जो ये प्रोग्राम हन जो ये करते हैं ते नाल संगतां दा भी जिहड़ियां उह प्रबंधकां दा भी बहुत धन्नवाद करदियां हन जिके हर साल उहनां नूं इत्थे बुलाउंदे हन जिथे साडा इह इष्ट है साडा गुरु है असीं अरदासां बेनतियां करदे हाँ असीं धन्नवाद गुरु दा करदे हाँ दित्तियां दातां दा उहदे नाल नाल ही असीं अपने बच्चिआं नूं भी अगों अपने कल्चर दे नाल अपने सभ्याचार दे नाल अपने धर्म दे नाल जो है उह जोड़न दा यतन करदे हाँ ते नाल दी नाल परिवार जो इलाके दीआं धीआं भैणां दूसरे नगरां विच ब्याहियां जांदियां हन उहनां नूं भी एकत्र करके सारे परिवार जिहड़े हन एक वक्खरा ही जिथे माहौल हुंदा क्योंकि अखंड पाठ साहिब दा माहौल वक्खरा दूसरियां पार्टियां दा वक्खरा हुंदा सो इह बच्चिआं दे लई एक बहुत ही वधिया मैसेज जांदा है ते इहदे वास्ते जो आप सब रल मिल के संगतां प्रबंधक एक दूसरे दे आसरे नाल ही इहे प्रोग्राम चलदे हन ते नाल दी नाल साडे जिथे बच्चे ते होर भैण भरा जिहड़े एक दूजे नाल वाकफियत भी उहनां दी वधदी है ते जो आउण वाले समें दे विच खास करके बच्चिआं दे वास्ते कि असीं किस तरह अपने भैणां भाईआं नूं साडी किस तरह के एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हुंदियां हन असीं किस तरह उहनां दे नाल मिलदे गिलदे हाँ यह भी एक बहुत वड्डा फैक्टर है इस दे विच। सो एक वारी फिर प्रबंधक वीरां दा संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद जो परसों रोज तो असीं देख रहे सी लंगरां दे विच किस तरह बड़ी श्रद्धा दे नाल सेवा भाव दे नाल हर एक प्राणी जो सेवा कर रहा सी ते इत्थे भी दीवान हाल दे विच भी संगत काफ़ी बैठ के जो है गुरबाणी भी श्रवण करदी सी। सो ये सारे प्रोग्राम जिहड़े हन आप जी दे वल्लों लिखण लई जिथे संगतां आप जी दा धन्नवाद गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा वल्लों भी असीं आप जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हाँ जिहड़ी कि इन्नी मेहनत करदे हो ते अगले साल वल दा संगतां दी जानकारी लई प्रबंधक वीरां ने जो अगले साल वास्ते प्रोग्राम लिखिया है उह 30 जुलाई 2027 नूं दिन शुक्रवार अखंड पाठ साहिब गुरद्वारा साहिब विखे इत्थे शुरू होणगे ते जिन्हां दे भोग 1 अगस्त नूं जो है गुरद्वारा साहब विखे पैने हैं आप जी अपने जो तुहाडे रजीवे हैं अगले साल दे जां किते बाहर अंदर जाण दा प्रोग्राम आपां बणाउंदे हां ते तुसीं जरूर ये डेटा अपने कैलेंडर ते नोट कर लेनी आ जां अपने घर विच जिस तरह भी सांभ सकते हो सांभ रहे तां कि प्रोग्राम जिहड़े हन अगे पिछे कीते जा सके। ये नगरां दे प्रोग्राम जिहड़े मिस करने बड़े औखे हुंदे आ क्योंकि आपां हर किसी नूं इत्थे मिल गिल भी लैंदे हां ते नाल गुरु महाराज दे जो अरदास बेनती हुंदी आ उस विच भी शामिल हुंदे हां। सो अगले साल का प्रोग्राम इस तरह है। बाकी जे कोई चेंज हुई तो प्रबंधक वीर आप जी दे नाल जो है वो दी सांझ पा लैणगे। हुण जो है एक होर अखंड पाठ जो है गुरद्वारा साहब विखे वह भाई जगीर सिंह जी धालीवाल के परिवार वालों भी होए हैं उन्होंने भी भोग पाए गए हैं तो सारिया रल मिल के जो है आप हमेशा दी जो हर वीक वीकेंड से मेन दरबार हाल के कीर्तन सजते हैं आप सारिया ने उत्थे जाके हाजरियां भरनिया सोशलाइज भी होना आप सारे इस चीज़ को अंडरसटैंड करते हैं पर उत्थे मेन दरबार हाल के जिथे कीर्तन शुरू हो चुका कथा होनी है ढाडी वारा हैं उत्थे जरूर आपने हाजरियां भरनिया हैं। बाकी समा अपने को बहुत है बार लंगर हाल के बार टेंट भी लगे हुए हैं उत्थे भी जाके सोशलाइज आप हो सकते हाँ। सो इनिया बेनतियां प्रवान करनिया तो इस दीवान हाल के जो अगला प्रोग्राम है सुखनी साहब के जाप परिवार वालों हो रहे हैं तो अज के जो ये विशेष प्रोग्राम इन्ह नगर वालों अखंड पाठ साहब के सन उन्हों की इतने समाप्ति है। एक बार फिर आई समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद होइयां भुल्लां दी खिमा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ, नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवणी होई, उठत बैठत सूतक लागै, सूतक परैर सोई, फासन की बेद सबको जाने, छूटन की एक कोई, कह कबीर राम हृदय बिचारे, सूतक तिने ना हुई।

प्रसाद गुरु प्रसाद राग माला राग सं पंज ब्रह्म संग लापे अठो नंदन प्रथम रा पैरो वे करही पंज रागनि संग उचारही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगले पुन लेके के पे बारी है पैरों की पांचो मारी पंच मर्द सा सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पात अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माँ कौशकला पै संग रागनी पांचों था पै गोंड करी और देव गंधारी गंधारी से ऊती उचारी तनासरी है पांचो गाय मारा कौशक संग लाई मारु मतंग में वारा पर बचन कौश के अबारा खड़े अपार नद गाय अष्टमाल कौशक संग लाए पुंडायो हिंडोल पंजनार संगा सुत उठे तान कलोल गायन तान मिलावे तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सर श्री लय पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरम आनंद पास करे आये चंद्रम बे मंगल सहाय सरस बान हुआ बनोदा गावे सस बसंत कमोदा आस बुद्ध में कह सवारी पुनाई दीपक की बारी का शैली बड़ मंजरी टोडी कई अलाप कामो दियो गुजरी संग दीपक के था कालंका कुंतले ओ रामा कमल को चंपक नामा गौराव कमला कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल सिरा वह गावे पांचो संग बरंग लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसा वरी ते पासे सिंधवी अलापी श्री राग से पांचो दापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड को गंभीर खष्ट मेघरा वह गावे पांचो संग बरंग लावे सोड गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुनी उचा सुरसोह पुन गिनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरा तर गई दृके दारा जबली तर नड़े जल तारा पुन गावे

सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला तीजा। आनंद क्याओ ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहसीती मन वजिया वधाइया राव रतन परिवार परिया शब्द गावण आईया शब्द तंगा बोरी केरा मंजनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तो मन मेरे दू सब सारना अंगीकारो करे तेरा कर सब सवारना सब न गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कार तेरे करता तेरे सब किच है जिदे सो पावे सदा सिसला तेरी ना मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द गनेरे कहे नानु सचे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा भुखा साब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन शां सा पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जे दिया वड्याइया कह नानक सुनो संत शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पन शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जिस कर तारिया भाई दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तो जिन कहो सिना मार के लागे कह नानक ते सुख हुआ तित कर।